उस्तै, धड़कन उस्तै, धरती उस्तै, आकाश उस्तै, चूट उस्तै, रगत उस्तै, आखिर मान्छे मान्छेमा

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

कुटी सुनसादी पसल तौली हवा रोड पश्चिम पट्टी एनसेल टावर भएकै घरमा प्रोप्राइटर ओम गहतराज शुभचिन्तक लोक बहादुर बिक नायरी मोबाइल 98215 90 00 95 98575 56 095 र 98174 52 311

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन

सुरक्षित जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाइफ।

0: बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गाँव, बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गाँव। धीरे धीरे चल रे अजोरिया धरी धरी पाँव।
2: उफ, अब जाए के घर के देवाल लिपोती के उराय लाग।
3: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म बाबा। खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
2: ओराय लाग अम्मा।
3: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
2: हो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
4: अरे बापा रे अम्मा, हमें सांप डसलीस।
3: अरे बाप रे बाप, कहाँ डसलीस बिटिया?
4: यही दे हाथ में डसलीस अम्मा।
3: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमरे मुस्कान बिटिया का सांप डसलीस। अरे क्यों है क्यों है?
5: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
3: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप डसलीस की काओ।
5: ना घबराओ जय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
3: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
4: होता है
5: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के चूरिया खोल दिया जाए, डस लिया ओकरा हाथ न चला बजाए।
3: हो थे बाबू, और साफ डस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के हो की?
5: नहीं काकी नहीं, सांप डस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
3: तब तो जहर मोहरा लाई के सपवा डस लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
5: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
3: बुझेन बाबू बुझेन।
5: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दे जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरे के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम पे के देखे करा। हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा। हमरे इनके गांव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
3: राकेश बाबू राकेश बाबू, मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
5: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए, मिला तो मुस्कान का बताए सका जात है।
3: जी वो थे बाबू, चलो।
6: याद रखा जाए, सांप डसलिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कौनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
7: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए। कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जात है, लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर उन लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
6: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है, और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
0: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
8: होइन, कहाँबाट लिएर आउनुभयो यस्तो गहना? न डिजाइन राम्रो छ, हेर्नुहोस् त यो हार, यो बाला म त लाउँदिन है।
9: अब के गर्नु त, राम्रै त छ नि, कहाँ राम्रो डिजाइन छ, कुन सुनचाँदी पसल राम्रो हो जानेको मान्छेले भनेको थाहा हुन्छ नि।
8: ल तपाईँ पनि बिहान भरि सम्झाए न्यू अर्घाची ज्वेलर्स बारगङ नगरपालिका चार जितपुरमा जानुहोस् भनेको होइन, भनेको सुन्ने होइन, आफ्नो मनले ल्याउने हो, पैसा मात्र सुहा।
9: लौ लौ त्यसो भने जान त नि न्यू अर्घाची ज्वेलर्स तिर, त्यही फेरि यी गहना कच्चा कुचु कपारेर तिम्रा डिजाइनका गहना ल्याउँला भयो त।
10: हजुर, विगत 27 वर्षदेखि सेवा दिँदै आइरहेको न्यू अर्घाची ज्वेलर्स 4 नम्बर जितपुर दौलीहवा रोड कृषि विकास बैंकको अगाडि आफ्नै निवासमा सरेको जानकारी गराउँदछौ।
8: हामी कहाँ बिना रसायनको गरगहना अर्डर बमोजिम बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। ग्राहकहरूको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना हो।
11: थप जानकारीका लागि न्यू अर्घाची ज्वेलर्स 4 नम्बर जितपुर दौलीहवा रोड कृषि विकास बैंकको अगाडि।
12: न्यू अर्घाची ज्वेलर्स प्रोप्राइटर गोकुल खनाल, मोबाइल 9800795526 र 9870782790।
13: ओहो काका, अनुहार न्याउरो बनाएर झोला बोकेर टाढै लाग्नु भयो कि क्या हो?
14: हेर न भतिज, म त पायल्स भएर निकै समस्यामा पो छु त। दिशा गर्दा मासु बाहिर निस्किन्छ, रगत पनि आउँछ, अनि तेरो काकीलाई पनि पाठेघरको समस्या छ। त्यही भएर हामी त आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्न काठमाडौँ जान लाग्यो नि।
15: काका, त्यसको लागि तपाईँले चिन्तै नलिनुहोस् न, 2 दशकदेखि सेवा दिँदै आएको हाम्रै गजहेडा बजार बुद्ध चोकमा भर पर्दो र विश्वासिलो उत्तम फार्मेसीमा थप सेवा सहित कुकुब आयुर्वेद औषधालाई छँदैछ नि। तपाईँ कहुनुहोस्, तपाईँको समस्याको समाधान सफलतापूर्वक हुन्छ।
16: हाम्रा सेवाहरू पायस, मलद्वारमा मासु पलाएको, दिशा बस्दा रगत देखिने चिलाउने, फिस्टुला मलद्वारको 2-3 अङ्गुल छेउछाउमा ससाना घाउ खटेर आउने, भिख निस्कने, फिसर मलद्वारमा चिरा परेको, दिशा बस्दा अत्याधिक दुखाइको महसुस हुने,
15: महिलामा हुने समस्या महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, आङ खस्ने, यौनाङ्ग चिलाउने, बाजु पर्न तथा यौन चाहना नहुने, पुरुषमा हुने समस्या शीघ्र पतन, उत्तेजनामा कमी, यौन दुर्बलता, यौन चाहना नहुने, पेट सम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्राइटिस, ग्यास्ट्रिक अल्सर, गानुगोला, अपच, कब्जियत, आइबीएस, जन्डिस, मृगौलाको पथरी तथा अन्य पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार तथा परामर्श सेवा, पुरानो भन्दा पुरानो बाथ, युरिक एसिड तथा गर्दन ढाड कम्मरमा नसा च्यापिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, अत्याधिक पोल्ने, सिल्का हान्ने तथा अन्य हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्याको पञ्चकर्म, अग्निकर्म तथा फिजियोथेरापी द्वारा सफल उपचार,
16: छाला सम्बन्धी समस्या, नयाँ तथा पुरानो एलर्जी, अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोर, दाग सेतो दुबी, छालामा चाला आउने तथा सोराइसिस रोगको पञ्चकर्मद्वारा सफल उपचार तथा परामर्श,
15: दैनिक BMS डाक्टर दिनेश थारूद्वारा चेक जाँच तथा परामर्श सेवा, प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिशंकर चौधरीद्वारा चेक जाँच तथा परामर्श सेवा, सम्पर्क उत्तम फार्मेसी कुकुब आयुर्वेद औषधालय, बारदिङ चार बुद्ध चोक कपिल वस्तु, मोबाइल 9847764666 र 9824152191।
16: सुन्नुहोस् त, हामी कहाँ बिना अपरेशन छार सूत्र विधिद्वारा पायल्स, फिस्टुला र फिसरको सफल उपचार गरिन्छ।
17: मेरो त घर बनाउने धोको पनि अरूको देख्दा देख्दै सकियो। त्यो हरिदाईको घर हेर्दा राम्रो भएर के गर्नु? धाराका पाइपहरू सबै फुटेर नुहाउने बाथरूम, किचन टोयलेट गइसक्नु छैन, मलाई त झन् केही थाहा छैन। सस्ता पाइप धारा ठिक हुन्छन्, फेरि त्यति मात्र भएर पनि भएन, छड सिमेन्ट पनि चाहियो। साह्रै तनावको काम रहेछ।
18: हजुर, यस क्षेत्रकै विभिन्न क्वालिटी युक्त हार्डवेयर सामानका लागि ग्रिसमा सप्लायर्स, सबैको रोजाइमा रहेको पञ्चकन्याका CPVC पाइप फिटिङका सामानहरू, धाराका आइटम, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका छड, सिमेन्ट, पानी ट्याङ्की, कम्बट सिटहरू, मार्बल, सोमानी कम्पनीका ट्रायल, होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।
17: हजुरलाई समय पनि कम लाग्ने, हरेक सामानहरू फिट गर्न सजिलो हुने, पाइपहरूमा खिया लाग्ने र चुहिने समस्याको समाधान।
19: सुन्नुहोस् त हामी कहाँ टाइल ग्रेनाइट डेन काडो बाथ फिटिङ सेनेटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है।
20: सम्पर्क ग्रीष्म सप्लाइज बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु फोन 076550317 मोबाइल 98571 713 संचालक गिरिराज कणेश।